102.8 FM और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशन को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया।

0: हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम 6:35 से श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत्व वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। प्रस्तुति चारूबाला खरे की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 से। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी अंजलि, लेखक अरगवान अभी और संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान की।

11 बजे आप सुन सकते हैं मैटिनी शो, 12 बजे समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल, सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1 बजे। इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां। त्रिवेणी कार्यक्रम 2 बजे से, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे,

श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे से। दिन में 3 बजे नाट्य तरंग कार्यक्रम में सुनिएगा नाटक अभिशप्त गांधार, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवाएंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम शाम 6:35 पर। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत्व वाद्य कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारुबाला खरे की। फिल्मकार, लेखिका, नाटककार सई पराजपे द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा प्रोग्राम जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी होगी स्वामिनी का भाग 2। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:15 से। आपके लिए ये कार्यक्रम रात 9 बजे। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। छाया गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको याद दिला दें रात 10 बजे। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए श्री रामचरितमानस गान भाग 218। प्रसंग है अयोध्या कांड।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया। किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: गजतत वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, कल हमने वायलिन के इतिहास पर चर्चा की थी और भारत में इसके प्रचलन पर विचार किया था। आज हम वायलिन की रचना और उसकी वादन तकनीक पर चर्चा करेंगे। वायलिन की रचना विभिन्न भागों को जोड़कर की जाती है, इस कारण इसके अलग अलग भाग पर चिंतन कर उसमें सुधार का प्रयत्न हर समय किया जाता रहा है। बैक, बेली और रिब्स मिलाकर इसको विशेष आकार दिया जाता है। इसके अंदर निश्चित स्थान पर बेस बार और साउंड पोस्ट लगाए जाते हैं। नेक के ऊपर फिंगर बोर्ड लगाया जाता है। तार लगाने के लिए टेलपीस में लगे एडजस्टर और पेक बॉक्स का उपयोग करते हैं। ब्रिज और नट पर तार रखते हैं। ब्रिज साउंड होल्स के मध्य एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार वायलिन का ढांचा तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके अवयवों के नाम इस प्रकार हैं: परफ्लिंग, लाइन स्ट्रिप, स्क्रोल, चिन रेस्ट आदि। वायलिन के गज अर्थात बो को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया जाता है: स्टिक, हेयर, पॉइंट, फ्रॉग और बो स्क्रू। गज का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, इसका गहनता से अध्ययन श्री टॉर्ट द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित बो के मानक आज भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें चार तार प्रयुक्त होते हैं, किंतु पांच तार युक्त वायलिन का प्रयोग भी प्रचार में आ गया है। प्रोफेसर शिशिर कणाधर चौधरी, प्रोफेसर वीसी रानड़े आदि कलाकार पांच तार युक्त वायलिन ही प्रयोग करते हैं। वायलिन में तरबे लगाने का प्रयोग भी अनेक कलाकारों द्वारा किया गया है। पंडित वीजी जोग पांच तार युक्त तरबदार वायलिन से ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन खड़ा रहकर अथवा कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है, किंतु हम भारतीय सामान्यतः इसे नीचे बैठकर बजाते हैं। इस प्रकार नीचे बैठने से हमें सूत, घसीट, गमक आदि को उत्कृष्ट ढंग से बजाने में सुविधा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारतीय परंपरा अनुसार गायन वादन बैठकर ही किया जाता है। दाहिने हाथ से विशेष प्रकार से गज पकड़कर गज का संचालन आवश्यकता अनुसार तारों पर किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली से विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि वायलिन वाद्य पर गायकी और तंत्रकारी दोनों ही शैलियों को उत्तम प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वायलिन के तारों को मिलाने की मुख्य चार पद्धतियां प्रचलित है। प्रथम विधि GDAE अर्थात परे धग, इसे हम मसा परे भी कह सकते हैं, अर्थात इसके तार मंद्र मध्यम, मंद्र षड्ज, मध्य पंचम और तार सप्तक के ऋषभ स्वरों में मिलाकर बजाए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन इसी प्रकार मिलाकर वादन करते हैं। हमारे यहाँ चित्रपट संगीत में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तार मिलाने की दूसरी पद्धति है मंद्र षड्ज, मंद्र पंचम, मध्य षड्ज और मध्य पंचम अर्थात साप साप।

कर्नाटक संगीत के कलाकार इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भी कुछ कलाकार इस पद्धति से मिलाकर वादन करते हैं, जैसे डॉक्टर एन राजम और श्री डी के दातार आदि। तो आइए हम इसी पद्धति से बजाया गया डॉक्टर एन राजम का राग यमन सुनते हैं।

वायलिन मिलाने की तीसरी पद्धति है प सा प सा, अर्थात इसके तार मंद्र पंचम, मध्य षड्ज, मध्य पंचम और तार षड्ज के स्वर में मिलाए जाते हैं। इस पद्धति से मिलाकर बजाने वाले प्रमुख कलाकार पंडित वीजी जोग हैं। इसी पद्धति में मंद्र पंचम को मंद्र मध्यम में मिलाकर चौथी विधि बनाई गई है, अर्थात इसके तार म सा प सा में मिलाकर बजाते हैं। स्वर्गीय केशवराव सुरुंगे इसी पद्धति से मिलाकर वायलिन वादन किया करते थे। पसा पसा पद्धति से बजाया गया राग श्याम कल्याण अब हम सुनते हैं। कलाकार है पंडित वी जी जोग।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज में, जे नक्षब की रचना थी, नाशाद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम जारी रहेगा सवेरे 7:20 से। हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से

बोल रहे हैं। समय हो रहा है सवेरे के 7:10 और थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी भाषा में, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के पुणे केंद्र से रिले करेंगे।

0: सम्राट चंद्रगुप्त का फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी भरत व्यास की। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: देखो टर्मरिक

सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

छैला बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तपस्या फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एमजी हशमत के बोल थे, रविंद्र जैन का संगीत था।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म जाने अनजाने। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें
0: indiapost.gov.in। चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें राही प्यार के।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

खट्टा मीठा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार राजेश रोशन। इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं

0: से शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
4: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
5: आजादी के बाद

0: कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए।

0: उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहे फैला लें और जितना चाहे सिकोड़ लें। चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए, जैसे ही वो मुड़ती है कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है। वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है। हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते। उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सवेरे के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार आकाशवाणी के पुणे केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

घूमर घूमर घूमर घूमे रे, घूमर घूमर घूमर घूमे रे। पद्मावत फिल्म का ये गाना था। थोड़ा बहुत नृत्य तो दोस्तों सभी कर लेते हैं। वैसे हमने बात शुरुआत में एक्सरसाइज की थी, तो डांस भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है और ये स्ट्रेस बस्टर भी होता है। कभी उदासी घिराए दिल पर तो नृत्य करके देखें या कोई गीत गुनगुना कर देखें, तनाव भाग जाता है। और

0: कोई सुरीली बांसुरी की तान छिड़ जाए सुन ले तो तनाव बिल्कुल गायब हो जाता है। जरा ये संदेश सुन लीजिए।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर टू फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, तुलसी कुमार और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत।

0: डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवान जो शहीद।

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ओ रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। विशाल भारद्वाज की आवाज में गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे पालोमी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमज़ोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खान पान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खान पान कैसा है, उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पालोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य जवान जो शहीद।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यात्रा की शुरुआत।
4: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
5: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या

हिज्जा राजा उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में। साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राज कमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दारा दारा दारा दारा दारा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दारा तारा दारा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
1: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
0: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छन कर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम।
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो,

मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है, तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी, लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ, पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: रोशनी है, वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही

क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने

अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने नामे हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

0: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर
0: अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी।

रोज मोबाइल किनिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार

0: पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी, लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूँ। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फ़ोन कर ही लोगी, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला,

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद रफी।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।
2: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आइए सुने मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है? मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
1: तो
0: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा, और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी,
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था, और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी,
0: वो आपके

0: जमी पर।
1: जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
2: क्या बात।
1: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
2: वाह क्या बात है। ये सुबीर सेन की आवाज है,
1: सुबीर सेन
2: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के ख़जाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। हाँ है? अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ, हो जाता है, हो जाता है।
3: जैसे
2: तो आप तो जानबूझ करके आए,
3: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, गायक बन गए।
2: गायक बन गए,
3: ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा।
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा।
3: साहित्य में अच्छा बनाना चाहता अच्छा, था।
2: ठीक ठीक।
3: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था।
2: जी।
3: कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
2: वाह।
3: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
2: ठीक।
3: जिसकी जगह कम होने लगी और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था। आखिर सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
2: जी।
3: तो उस हलके में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी कलम हमने कान पे रखी है।
2: हाँ।
3: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
2: हाँ, ठीक।
3: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
2: अच्छा।
3: बिमलदा से आप शायद नाम
2: सुना बिमल राय
3: जी। हाँ, उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे और उनसे मिले। वहाँ पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
2: कौन सा गाना?
3: बंदनी में मोरा गोरा अंगले।
2: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
3: अब छोड़े जी क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था।
2: हाँ।
3: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला।
2: जी।
3: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें।
2: जी।
3: फिर लगा कि ये कुछ भूखा है।
2: जी।
3: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
2: जी।
3: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहाँ दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
2: सही बात, सही बात।
3: तो उन्होंने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
2: जी।
3: और बड़ा अच्छा मौका था,
2: तो जाहिर है हो गया, पहुंच गए, हो गया।
3: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
2: जी
3: कि लेखक की जगह अपनी है।
2: हाँ।
3: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं।
2: अच्छा।
3: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में, वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
2: अच्छा। हाँ, तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा।
3: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा।
2: सही बात, सही बात।
3: तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
2: ठीक ठीक।
3: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है।
2: हाँ।
3: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
2: मतलब फिर आपने निर्देशन तो, भी
3: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने
2: अच्छा
3: सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ। हाँ। में
2: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
3: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
2: अच्छा। तो देखिए इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
3: जा।
2: तो अब आप तो दोनों हैं। तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
3: जी हाँ, दोनों शख्सियतें।
2: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ
3: जी
2: लेखक और निर्देशक?
3: वैसे छोड़े जी आप, तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छे बोल लेते हैं बीच में।
2: अरे आप ही लोगों से साथ बैठ के
3: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
2: होता है ना?
3: जी हाँ।
2: अच्छा,
3: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझमें
2: जी
3: वो पकड़ लेता है, इसलिए जी हाँ।
2: अच्छा,
3: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है।
2: हाँ,
3: जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है।
2: अच्छा,
3: अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक।
2: अच्छा,
3: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
2: अच्छा, तो गुलजार भाई अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है जो पहले आपने सोच रखी थी, ऐसी है या कुछ अंतर?
3: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
2: अच्छा,
3: और रंगारंग है।
2: हाँ,
3: और अंग्रेजी में।
2: अच्छा,
3: फैसिनेटिंग है।
2: हाँ भाई,
3: बहुत फैसिनेटिंग।
2: अच्छा,
3: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पे कलम बंद कर लिया
2: जी,
3: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूँ और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूँ उसके लिए मैं अकेला नहीं हूँ।
2: अच्छा,
3: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
2: हाँ,
3: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे कर्मचारी टेक्नीशियंस हैं जितने
2: सभी उसमें शामिल,
3: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे ना मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो
2: बात नहीं बनेगी।
3: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जोड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आके पड़नी चाहिए तब बात बनती
2: है। सही बात, सही बात।
3: तो इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
2: सही बात,
3: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है।
2: हाँ,
3: उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती है, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल हाँ, जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में जुड़े हुए हैं,
2: एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना?
3: बहुत चर्चा।
2: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
3: सर, इसके विचार दो तरह से हैं।
2: पहली तरह
3: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा।
2: अच्छा,
3: तो जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए वही लेखक का ख्याल
2: जी
3: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है, तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
2: अच्छा अच्छा,
3: और वो प्रोपगेट करते रहे हम।
2: अच्छा,
3: और वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल जाओ।
2: ये चीज,
3: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
2: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
3: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। अब वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
2: जी,
3: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
2: जी
3: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
2: जी,
3: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि नहीं।
2: वाह वाह,
3: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
2: वाह,
3: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
2: जी
3: वो बनावटी रहेगा।
2: हाँ ठीक,
3: और ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं, जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो
2: जी,
3: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में
2: जी,
3: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
2: अच्छा,
3: शायद
2: अच्छा,
3: हो कहीं मेरी अच्छा, नजर से नहीं गुजरा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
3: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, आपसे आज की मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
2: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्में मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे, तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है? यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों का क्या विचार होते हैं?
3: खास तौर पे ताशकंद में
2: जी
3: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
2: अच्छा।
3: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
2: अच्छा।
3: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
2: हाँ,
3: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे एक तो राज कपूर साहब
2: जी,
3: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से
2: यहाँ पे।
3: और जो नए अदाकार वहाँ गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
2: वाह वाह।
3: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहाँ दिखाई गई, जगह जगह गए हम
2: जी।
3: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
2: अच्छा।
3: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
2: जी,
3: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
2: अच्छा।
3: या उनके अच्छा। सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
2: अच्छा।
3: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी करामद है।
2: बिल्कुल करामद है। और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
3: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
2: हाँ, है ना।
3: और
2: हाँ,
3: दोनों को जांच लेना चाहिए।
2: हाँ, जांच लीजिए।
3: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
2: जी
3: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
2: ठीक।
3: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
2: जी,
3: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
2: ठीक।
3: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी
2: जी,
3: एक बार तो ये महसूस होने देंगे कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची।
2: वाह, क्या बात कही।
3: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपकी कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
2: ठीक।
3: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं।
2: हाँ।
3: और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए
2: जी।
3: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है
2: जी।
3: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
2: अच्छा।
3: लेकिन पहुंच कम हुई है।
2: हाँ, ठीक है। तो
3: मतलब उतनी नहीं हुई। हाँ। जितनी होनी चाहिए थी।
2: हाँ।
3: और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
2: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे कदम रखा था, गाना लिखा था
3: जी हाँ।
2: और आप कवि हैं, शायर हैं
3: जी हाँ।
2: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी, आपकी जबानी तो क्या हर जाए।
3: छोटे जी, हर्ज तो कुछ नहीं
2: जी,
3: अच्छी बात है।
2: अच्छी बात है ना।
3: अगर उन्हें अच्छी लगेगी।
2: अरे लगेगी साहब।

0: नज़्म में आपको सुना देता हूँ और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था,
1: अच्छा वो जो शायर था,
0: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए, वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाजें जमा करता था, चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें,
1: वाह,
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते,
1: वाह,
0: और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था, चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई, आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से
0: आपका।
1: और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे, फिर
1: मिलेंगे। अच्छा नमस्कार,
2: इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था। और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार।

0: बैठनी शो करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा

0: 25 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुनिए यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

0: योगेश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज, फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: दिन
0: की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की
2: 40 ग्राम वजनाचा सुमारे 9,77,320 रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला आहे। या प्रकरणी 2 संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। शेतीची मशागत करताना रोटाव्हेटरमध्ये अडकून गंभीर जखमी झालेल्या बीड जिल्ह्यातल्या केस तालुक्यातील साळेगावमधील 32 वर्षीय शेतकरी मंगेश बाबूराव टोपे यांचा उपचारादरम्यान आज मृत्यू झाला। लातूर इथल्या एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते। 10 दिवसांपूर्वी शेतात रोटाव्हेटर सुरू असताना त्यात अडकलेला ठिबक सिंचनाचा पाईप काढण्याचा प्रयत्न करत असताना ते थेट फिरत्या रोटाव्हेटरच्या पात्यांवर पडून गंभीर जखमी झाले होते। अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात युरिया खरेदीसाठी 7-12 उतार्याची अट प्रशासनानं रद्द केली असून केवळ आधार कार्डवर आता खत मिळणार आहे। सुरुवातीला प्रशासनाकडून केवळ आधार कार्डाच्या आधारे युरिया वितरण करण्यात येत होतं, मात्र अशा पद्धतीनं खत विक्री झाल्यास साठेबाजी आणि काळाबाजार होण्याची शक्यता होती। त्यानंतर प्रशासनानं आधार कार्डसोबत 7-12 उतारा सादर करणं बंधनकारक केलं होतं, मात्र अनेक शेतकऱ्यांना 7-12 उतारा सादर करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या प्रशासनाला प्राप्त झाल्या। या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं सुधारित आदेश जारी करत 7-12 उतार्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला। आसाममधील जोरहाट इथल्या रौरिया विमानतळावर आज भारतीय हवाई दलाचं AN-32 हे विमान कोसळलं। सूत्रांच्या माहितीनुसार विमान नियोजित धावपट्टीवर सुरक्षितपणे उतरण्यात अपयशी ठरलं आणि ते गवताळ आसमान भागावर उतरलं। उतरताना मोठा स्फोट झाल्यानंतर विमानाला आग लागली आणि त्याचे 2 तुकडे झाले। भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान खेळल्या जाणाऱ्या 3 एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतला पहिला सामना आज धरमशाला इथं होणार आहे। दुपारी 1:30 या सामन्याला सुरुवात होईल। या मालिकेतील इतर 2 सामने लखनौ आणि चेन्नई इथं होणार आहेत। अमेरिकेनं फिफा विश्वचषक सामन्यात पॅराग्वेला 4-1 पराभूत करून विजयी सुरुवात केली। कॅलिफोर्नियातील सोफी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात स्ट्रायकर फोलारिन बालोगुननं सामन्याच्या पहिल्या सत्रात 2 गोल केले। पॅराग्वेसाठी बदली फुटबॉलपटू मॉरेसिओने 1 गोल केला। या गटातील दुसरा सामना आता तुर्कस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात खेळला जाणार आहे। या स्पर्धेतल्या ब गटातील सामन्यात कॅनडानं बोस्नियाशी 1-1 अशी बरोबरी साधली। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं।

पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना है। और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद SD बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, आई बहार, आई बरखा बहार, करे अंगना फुहार। और इसके अलावा

भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाजा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है, बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है, मिट्टी की पहली सौंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रही हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खय्याम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहाँ विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हालत ख़राब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है, दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना ये है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफ़र की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई

ये कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज़ कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है, एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नज़र आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नज़र आते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफ़ी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नज़र आते हैं, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। मरीन ड्राइव नज़र आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नज़र आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नज़र आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारीवारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी, क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर
प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहाँ प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते। बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाज, फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता हैं लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीज़ें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसों भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है। और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीले सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो, उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहे फैला लें और जितना चाहे सिकोड़ लें, चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए।

जैसे ही वो मुड़ती है, कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है, पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है। वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है। हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते। उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को

0: आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
5: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजाई गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी, खयाम।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंदगढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा

फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं। समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज़।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज। खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार। और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर

0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियां, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थाई रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी,
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जूते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
1: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
0: क्या क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
1: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
0: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
0: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
0: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
0: जो आज्ञा।

0: तुम्हारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। और वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान्य।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराज धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं। वो

0: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
1: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
0: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
1: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
0: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
1: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
0: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
1: पूछो।
0: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
1: गांधारी,
0: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्योंकि आपने केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
1: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
0: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण दिलाओ पुत्री।
0: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: कौन?
1: मैं
0: धृतराष्ट्र। आप, विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र

0: से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
0: महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य। ओह, असहनी है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कंधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने गांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
2: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
3: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
2: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
3: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
2: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
3: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
2: तो महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
3: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
2: महाराज,
4: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
3: कहो सूत।
4: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
2: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? इतना अपमान, इतना।

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर किया है? किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गांधारी।

0: बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं। दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुन की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधा?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधू के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षागृह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर भी। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। सोशल नेटवर्किंग है क्या आखिर? सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी क्लासमेट्स, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रम का उपयोग है। ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए मार्केटर्स सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं। लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है। इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे। आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज्यादातर 18 या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पिटारा। आज पिटारा के तहत आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज।
1: बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतर मालिक को, और उन्होंने बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफर की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे इन्हें डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो हाँ। गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही।
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, हाँ। अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले। और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं
0: किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं, तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक, और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा, फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है, तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था, फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए, वो समझ होता है इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है, अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े, अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए, अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है, कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब उसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है
1: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूँ जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट, अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यहाँ झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ 2-3 ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
0: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है, किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
1: करेक्ट। बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
0: हाँ।
1: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
0: कौन सा?
1: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
0: अजनबी।
1: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज के जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी
0: दिखती है।
1: दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: सिर्फ ऋतिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बींग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल यू नो डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको उसकी सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो. और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जांपल इज आई वुड से इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वाज, आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन. साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी. वेयर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

तो आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: एक बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

तेरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम ता तारा

अफसोस लेकिन ओ जाने मन हाय जाने मन, कांटे छुरी से खाना न आया, कांटे छुरी से खाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न आया बजाना न आया, अरे ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, गाना न आया बजाना न आया।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला लें, वहाँ समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो हैं, क्या कहने।

गाए माशा अल्लाह बाकी अदाए माशा अल्लाह माशा अल्लाह पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह दिल का करार हो तुम जाने बहार हो तुम करने को आए हैं नजारे हम बेचारे प्यार के मारे

चाल तुम्हारी सबसे आला, ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला, अपना तो हाल कुछ ना पूछो, कैद हुआ है चाहने वाला।

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहां भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है।
1: वो झरोके से जो

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वास्तव फिल्म से कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। और अब अगला गाना तराना फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, रविंद्र रावल का लिखा हुआ, धुन राम लखन की, आवाज शैलेंद्र सिंह की।

तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस कार्यक्रम का अगला गाना जतिन ललित का स्वरबद्ध किया हुआ है, गुलजार के बोल अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाजें, फिल्म खूबसूरत।

0: जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म का शीर्षक गीत, गौहर कानपुरी का लिखा हुआ धुन राज कमल की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का शेष भाग। सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना है समीर का रचा हुआ, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में, संगीतकार नदीम श्रवण।

अमित खन्ना के संगीत निर्देशन में, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया मनपसंद फिल्म का ये गीत है। गीतकार अमित खन्ना।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रोताओं कोयला फिल्म का गाना। रचना इंदिवर की है, संगीत राजेश रोशन का, गायक स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के।

आशा भोसले के स्वर में। ये थी अहमद वसी की रचना प्राण जाए पर वचन जाए, इस फिल्म से संगीतकार ओपी नैयर। और इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से हम बोल रहे हैं। झरोखा, आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे प्रस्तुत किया है फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार सई परांजपे ने। इंद्रधनुष के अंतर्गत 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी, इसके अंतर्गत सुनिए स्वामिनी, इस कहानी का दूसरा भाग। मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी है जिसका वाचन किया है ममता सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। 9 बजे सुनिए आपके लिए। संगीतकार वसंत देसाई पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनना न भूलिए छाया गीत।

कल सुबह 6:05 पर भक्ति रचनाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है वंदनवार। उसके पश्चात 6:45 पर आप 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में गजतत्व वाद्य इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिए। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:07:30 पर। सुनिए हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। आज के फनकार। कल सुबह 9:30 पर प्रसारित इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित कार्यक्रम। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर किया जाएगा। निर्देशक राज खोसला पर आधारित है कल का विविधा कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। प्रसारण समय कल दिन में 11:00। यादों की महफिल। ये कार्यक्रम प्रसारित

मंदाकिनी जोशी की लंबी बातचीत का तीसरा भाग। तरानी नए पुराने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। सैनिकों की शौर्य गाथा इस कार्यक्रम में कल शाम 7 सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित दीवान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कर्नल की शौर्य गाथा। हवा महल इस कार्यक्रम में रात 8 नाटिका आपको सुनवाएंगे कागज के जेवर, लेखक अभिलाष, निर्देशक पुरुषोत्तम दारव्हेकर। चित्रलोक का प्रसारण रात 8:15 पर होगा। आपके लिए आप सुनेंगे रात 9 और छाया गीत का प्रसारण रात 10। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन।

चित्रगुप्त की संगीत रचना आप सुन रहे थे गंगा की लहरें फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, शब्दकार मजरू सुल्तानपुरी। और अब हम दोनों फिल्म से, यह है साहिल लुधियानवी की रचना

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: के साथ ही संध्या रंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, कल हमने वायलिन के इतिहास पर चर्चा की थी और भारत में इसके प्रचलन पर विचार किया था। आज हम वायलिन की रचना और उसकी वादन तकनीक पर चर्चा करेंगे। वायलिन की रचना विभिन्न भागों को जोड़कर की जाती है, इस कारण इसके अलग अलग भाग पर चिंतन कर उसमें सुधार का प्रयत्न हर समय किया जाता रहा है। बैक, बेली और रिब्स मिलाकर इसको विशेष आकार दिया जाता है। इसके अंदर निश्चित स्थान पर बेस बार और साउंड पोस्ट लगाए जाते हैं। नेक के ऊपर फिंगर बोर्ड लगाया जाता है। तार लगाने के लिए टेलपीस में लगे एडजस्टर और पेक बॉक्स का उपयोग करते हैं। ब्रिज और नट पर तार रखते हैं। ब्रिज साउंड होल्स के मध्य एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार वायलिन का ढांचा तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके अवयवों के नाम इस प्रकार हैं: परफ्लिंग, लाइन स्ट्रिप, स्क्रोल, चिन रेस्ट आदि। वायलिन के गज अर्थात बो को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया जाता है: स्टिक, हेयर, पॉइंट, फ्रॉग और बो स्क्रू। गज का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, इसका गहनता से अध्ययन श्री टॉर्ट द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित बो के मानक आज भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें चार तार प्रयुक्त होते हैं, किंतु पांच तार युक्त वायलिन का प्रयोग भी प्रचार में आ गया है। प्रोफेसर शिशिर कणाधर चौधरी, प्रोफेसर वीसी रानड़े आदि कलाकार पांच तार युक्त वायलिन ही प्रयोग करते हैं। वायलिन में तरबे लगाने का प्रयोग भी अनेक कलाकारों द्वारा किया गया है। पंडित वीजी जोग पांच तार युक्त तरबदार वायलिन से ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन खड़ा रहकर अथवा कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है, किंतु हम भारतीय सामान्यतः इसे नीचे बैठकर बजाते हैं। इस प्रकार नीचे बैठने से हमें सूत, घसीट, गमक आदि को उत्कृष्ट ढंग से बजाने

में सुविधा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारतीय परंपरा अनुसार गायन वादन बैठकर ही किया जाता है। दाहिने हाथ से विशेष प्रकार से गज पकड़कर गज का संचालन आवश्यकता अनुसार तारों पर किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली से विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि वायलिन वाद्य पर गायकी और तंत्रकारी दोनों ही शैलियों को उत्तम प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वायलिन के तारों को मिलाने की मुख्य चार पद्धतियां प्रचलित है। प्रथम विधि जी डी ए ई अर्थात परे धग, इसे हम मसा परे भी कह सकते हैं, अर्थात इसके तार मंद्र मध्यम, मंद्र षड्ज, मध्य पंचम और तार सप्तक के ऋषभ स्वरों में मिलाकर बजाए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन इसी प्रकार मिलाकर वादन करते हैं। हमारे यहाँ चित्रपट संगीत में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तार मिलाने की दूसरी पद्धति है मंद्र षड्ज, मंद्र पंचम, मध्य षड्ज और मध्य पंचम अर्थात साप साप। कर्नाटक संगीत के कलाकार इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भी कुछ कलाकार इस पद्धति से मिलाकर वादन करते हैं, जैसे डॉक्टर एन राजम और श्री डी के दातार आदि। तो आइए हम इसी पद्धति से बजाया गया डॉक्टर एन राजम का राग यमन सुनते हैं।

वायलिन मिलाने की तीसरी पद्धति है प सा प सा, अर्थात इसके तार मंद्र पंचम, मध्य षड्ज, मध्य पंचम और तार षड्ज के स्वर में मिलाए जाते हैं। इस पद्धति से मिलाकर बजाने वाले प्रमुख कलाकार पंडित वीजी जोग हैं। इसी पद्धति में मंद्र पंचम को मंद्र मध्यम में मिलाकर चौथी विधि बनाई गई है, अर्थात इसके तार म सा प सा में मिलाकर बजाते हैं। स्वर्गीय केशवराव सुरुंगे इसी पद्धति से मिलाकर वायलिन वादन किया करते थे। पसा पसा पद्धति से बजाया गया राग श्याम कल्याण अब हम सुनते हैं। कलाकार है पंडित वी जी

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं। आप सुनेंगे मराठी बातम्या।

0: वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी। मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, कोई वजह हो कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब एक बहुत ही को लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, क्या गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो मारे नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा। और फिर तुलसीबाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सई के गुड़िया की शादी।

0: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला।
1: फौजी साथियों, मेरी एक फिल्म थी कथा, जिसमें है एक चौल और उस चौल में रहने वाले रंग बिरंगी अजीबो गरीब पड़ोसी। तो चलो इसी फिल्म का एक गाना हो जाए।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला।
1: वैसे फिल्म डायरेक्टर करके मुझे ज्यादातर पहचानते हैं लोग, लेकिन मेरे करियर की शुरुआत हुई दूरदर्शन से, टेलीविजन से। जी हाँ, मैं टेलीविजन के जो सबसे पहले 6 प्रोड्यूसर थे उनमें से एक मैं थी। और एक प्रोग्राम मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने किया, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि हमने एक प्रतियोगिता रखी, हाँ, कि 50 साल से ऊपर जिनकी शादी हुई है ऐसे लोगों की, और उनमें से कौन सा कपल, कौन सा जोड़ा सबसे ज़्यादा लोगों को जीतता है। बहुत लोगों ने अपनी अर्जियां भेजी इस कार्यक्रम के लिए। 2-4 बहुत प्यारे प्यारे जवाब याद है कि एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरे हैप्पी मैरिज का ये राज है कि मैंने बीवी को हमेशा सुबह सुबह, वो जब तक बिस्तर पे ही अभी लेटी है, वहाँ पहुंचकर उसको एक गरम गरम प्याली चाय पेश किया हमेशा। हालांकि ये कह सकते हैं कि इसको तो मैंने एक व्रत की तरह हर रोज ये पाला, ठीक। और बीवी फिर इतनी खुश हो जाती थी वो चाय की प्याली एक पी के कि दिन भर वो फिर दोस्तों मेरी सेवा करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। दूसरे एक बुजुर्ग ने कहा कि हम दोनों ने एक तय किया कि चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कितनी भी मोटी लड़ाई हो, वो लड़ाई दूसरे दिन तक नहीं घसीटते ले जाना, रात को सोने से पहले उसको मिटा देना, ख़त्म करना, और दूसरा दिन फिर नए तरीके से नई लड़ाई के लिए तैयार। एक औरत ने कहा, बुजुर्ग बुढ़ी सी औरत थी, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी उनको ना नहीं कहा और हमेशा अपने ही मन का किया। तो चलो एक गाना हो जाए।

मेरी सबसे प्यारी फिल्म अगर कहूँ तो वो है दिशा, और इस फिल्म का एक गाना है जो मैंने खुद लिखा है बम्बई के ऊपर, बम्बई बम करके। धुआं घुटन और बीमारी, यहाँ जवां मर्द के बाल पके, हर कुछ मिलता है इस नगरी, मोल तुम्हारा 4 टके। अरे 4 टके भी नहीं कम, बम्बई बम्बई बम्बई बम। वहाँ आँख बिछाए बैठी राधा, आंसू उसके सूख गए, बच्चे जो पीछे छोड़े वो शक्ल बाप की भूल गए। अरे भूल गए तो क्या है गम, बम्बई बम्बई बम्बई बम, बम्बई बम्बई बम्बई बम। अब एक मेरा बहुत पसंदीदा गाना जो ना मेरे फिल्म का है ना मैंने लिखा है, सुने।

0: बहादुर फौजी साथियों, अब आपसे अलविदा कहती हूँ। अपना ख्याल रखना, हमारा भी रखना, फिर मिलते हैं। जय हिंद।
1: ये थी मशहूर फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखिका और नाटककार सई परांजपे द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है तेज श्री कामले।

0: देव दर्शन धूप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
0: देव दर्शन धूप।

0: आप हैं विविध भारती के संग
1: जिज्ञासा।
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे हर साल मनाया जाता है 14 जून को। दरअसल 14 जून 1868 को पैदा हुए थे कार्ल लैंडस्टाइनर। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे की हर साल एक थीम होती है और इस बार की थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी इंसानियत की एक बूंद आप रक्तदान कीजिए और लोगों का जीवन बचाइए। वैसे आपको बता दें कि भारत में हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चाहे इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन हो या नेशनल ब्लड डोनेशन डे, इन दोनों का मकसद यही है कि लोग अपने मन से ब्लड डोनेशन करें। लोगों को इस बारे में जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो सेफ ब्लड है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत देश में है और हर साल लाखों लोग दुर्घटनाओं, ऑपरेशंस, प्रेगनेंसी, कैंसर, एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ब्लड की खोज करते हैं। उनको जरूरत होती है और वक्त पर जब ब्लड नहीं मिलता तो कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जो अपनी मर्जी से ब्लड डोनेशन करने वाले लोग हैं वो एक मसीहा की भूमिका निभाते हैं। ब्लड डोनेशन सिर्फ खून देने वाले के लिए नहीं बल्कि खून लेने वाले दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपका आयरन लेवल कंट्रोल रहता है और इससे दिल की बीमारियों की संभावना कम होती है। ब्लड डोनेशन के बाद नई ब्लड सेल्स बनती हैं और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक बार ब्लड डोनेशन करने से तकरीबन 650 कैलोरी तक बर्न होती है और आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के पहले आपकी सेहत की जांच की जाती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की जांच भी हो जाती है। पर ब्लड डोनेशन के लिए कुछ बुनियादी मापदंड तय किए गए हैं। ब्लड डोनेशन के लिए इंसान की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उसका वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए ताकि ब्लड डोनेशन के बाद किसी तरह की कमजोरी या सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना उसे नहीं करना पड़े। इसके अलावा अगर व्यक्ति को एचआईवी, हेपेटाइटिस, कैंसर या कोई गंभीर संक्रमण या क्रॉनिक डिजीज है तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं भी ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती हैं। वैसे हमने आपको बताया कि ब्लड डोनेशन करने के बाद शरीर खोए हुए खून की पूर्ति के लिए नई ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया बोन मैरो को सक्रिय रखती है और शरीर को ब्लड निर्माण की प्रक्रिया में ताजगी प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर ब्लड डोनेशन एक बहुत हेल्दी आदत भी है। हम इसे एक नियमित चीज बना लें कि हम जरूरत पड़ने पर लोगों को अपना ब्लड डोनेट करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट बनने जा रहा है। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों को मेसी, रोनाल्डो, एम्बा

पे बेलिंगहैम और विनीसियस जैसे सितारों को देखने के लिए देर रात तक जागना पड़ेगा या सुबह सुबह नींद छोड़कर तुरंत स्क्रीन के सामने आना पड़ेगा। 11 जून से शुरू हो चुका फुटबॉल का वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि फुटबॉल के इतिहास की एक सनसनीखेज घटना है। हर साल 32 टीमें उतरती हैं, इस साल 48 टीमें उतरेंगी और 2.5 वर्षों तक चले क्वालिफिकेशन मुकाबलों के बाद ये तस्वीर साफ हुई है कि 48 टीमें 104 मैच खेलेंगी। अब तक किसी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा मैच नहीं खेले गए हैं। कुल 16 शहरों में ये मैच आयोजित होंगे और अगले 39 दिन सिर्फ फुटबॉल की सनसनी होगी और धनाधन गोल मारे जाएंगे। फीफा के 6 महाद्वीपीय संघों यानी कन्फेडरेशन के जरिए टीमों का चयन हुआ है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि छोटे देशों को भी मौका मिला है। पहले जहां वर्ल्ड कप में जगह बनाना मुश्किल होता था, वहीं टीमों की संख्या बढ़ने से नए देशों के दरवाजे खुले हैं और इससे टूर्नामेंट ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गया है। मेजबान होने के कारण अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को सीधी एंट्री मिली है और बाकी टीम्स को लंबे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट और प्ले ऑफ से होकर गुजरना पड़ा है। आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज होगा 11 जून से 27 जून तक, राउंड ऑफ होगा 28 जून से 3 जुलाई के बीच और उसके अलावा राउंड ऑफ 16 होगा 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। उसके बाद होंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 से 11 जुलाई, सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई को, थर्ड पोजीशन के लिए जो मुकाबला है वो 18 जुलाई को होगा और फाइनल मैच होगा 19 जुलाई के दिन। इस टूर्नामेंट में एशिया से 9, अफ्रीका से 10, दक्षिण अमेरिका से 6, उत्तर अमेरिका से 6, ओशियाना से 1 और कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एस्टेका स्टेडियम जो मेक्सिको सिटी में है, इतिहास का पहला स्टेडियम बनेगा जो तीसरी बार वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1970-1986 में भी ये स्टेडियम वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला होगा मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में। इस बार फुटबॉल के वर्ल्ड कप में बहुत सारे बदलाव और टेक्नोलॉजी का बहुत सारा दखल होगा। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी यानी SAOT का अपग्रेडेड वर्जन यहां इस्तेमाल होगा। ऑफसाइड की स्थिति में असिस्टेंट रेफरी को तुरंत अलर्ट मिलेगा जिससे फैसले पहले से ज्यादा तेज और सटीक होंगे। VAR को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। अब गलत दिए गए कॉर्नर, गलत दूसरे येलो कार्ड और कुछ अन्य स्पष्ट रेफरिंग गलतियों की भी समीक्षा की जा सकेगी। रेफरी बॉडी कैमरे का पहली बार वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करेगा और दर्शकों को रेफरी के नजरिए से भी कुछ फुटेज देखने को मिलेंगे। थ्रो इन और गोल किक में समय बर्बाद करने पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। कई परिस्थितियों में 5 सेकंड की काउंटडाउन व्यवस्था लागू होगी ताकि खेल की रफ्तार बनी रहे। सब्स्टिट्यूशन में देरी पर कार्रवाई, मैदान छोड़ने वाले खिलाड़ी को निर्धारित समय के भीतर बाहर जाना होगा नहीं तो टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खिलाड़ियों की 3D स्कैनिंग, AI टेक्निक का इस्तेमाल और ऑफसाइड फैसलों और प्रसारण ग्राफिक्स को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 17 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगी। भारतीय फुटबॉल फैंस को लियोनेल मेसी और उनकी टीम के मैच को देखने के लिए देर रात तक या सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है। ग्रुप लेवल में अर्जेंटीना के तीनों मुकाबले अलग अलग समय पर रखे गए हैं। अर्जेंटीना का पहला मैच जैसा कि हमने आपको बताया 17 जून को, दूसरा मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ है और तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को जॉर्डन के खिलाफ है। अगर अर्जेंटीना नॉकआउट चरण में पहुंचती है तो उसके मुकाबलों की तारीख और समय फिर आगे उनके प्रतिद्वंदियों के मुताबिक तय होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई वाली पुर्तगाल की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को DR कांगो के खिलाफ करेगी और भारतीय समय अनुसार पुर्तगाल के सारे मुकाबले रात में खेले जाएंगे। टीम का दूसरा मुकाबला होगा 23 जून को उज्बेकिस्तान से और तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को कोलंबिया के खिलाफ खेला जाएगा। रोनाल्डो का ये तकरीबन आखिरी वर्ल्ड कप है और सभी की नजर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 1930 से खेला जा रहा है। कुल 22 बार ये आयोजन हो चुका है मगर सिर्फ 8 देशों के पास ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। इनमें ब्राजील का नाम सबसे ऊपर आता है जिसने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। ब्राजील ने 5 बार ये टाइटल जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वालों में ब्राजील, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना, फ्रांस, उरुग्वे, इंग्लैंड और स्पेन है। ब्राजील के पास सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, 5 हैं।
1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। जर्मनी चार बार जीता है, 1954, 1974, 1990 और 2014। इटली चार बार जीता है, 1934,

1938, 1982 और 2006। अर्जेंटीना ने भी ये फीफा वर्ल्ड कप 3 बार जीता है, 1978, 1986 और 2022 में। फ्रांस 2 बार जीता है, 1998 और 2019 में। उरुग्वे 2 बार जीता है। इंग्लैंड और स्पेन एक एक बार ये टूर्नामेंट जीते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप का जो जुनून है वो पूरी तरह से हम सब पर हावी हो चुका है।

0: इस बीच एक और बड़ा आयोजन हो रहा है और वो है MIFF यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको दी जाएं।
1: मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना, मूल शिल्प और दृश्य भाषा सिनेमेटोग्राफी की आत्मा, ये भी एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस फिल्म समारोह में आप भी बतौर डेलीगेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साइट है my.MIFF.in।
0: ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते।
2: जिज्ञासा।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: दिशा स्कीम च्या टेली लॉ न्याय बंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदी विषयक मदतीसाठी टेली लॉ च्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबर वर तसेच www.tele-law.in या वेबसाइट वर माहिती मिळवू शकता.
1: They say the view from the top changes everything. But for a few, the view from the clouds is the only one that matters. The Indian Air Force invites applications for commissioned officers through AFCAT 2 of 2026. Registrations open on May 20th, 2026. Visit afcat.edcil.co.in and take the first step toward the blue.
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.

ये दिल लगी इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों ने। समीर के बोल है और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

के श्रेया घोषाल, कविता सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में कार्यक्रम का ये पहला गीत देवदास फिल्म से, नुसरत बद्र के बोल इस्माइल दरबार का संगीत।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

अलका याग्निक सोनू निगम साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे चलो इश्क लड़ाएं। इस फिल्म का गीत समीर का रचा हुआ, संगीत हिमेश रेशमिया का था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

और आज के चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा हुतुतु फिल्म का गाना, संगीत विशाल का है, आवाजें लता मंगेशकर हरिहरन और साथियों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में

0: संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का यह अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा इस फिल्म से। ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ है।

आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ, संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रेंची शाला, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया।

था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

तुमसे मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी नहीं, मैं भी नहीं।

0: छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होतं, एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जातं। मद्यपान करून गाडी नको रे धरू, आईबाबांची स्वप्न नको भंग करू। झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा, आपलेच लोक वाट पाहती घरा। जीवन अनमोल आहे, वेग टाळा, सुरक्षित प्रवास हाच खरा।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

तुमको पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबे जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: देखो डर मरे नहीं कॉस्मेटिक।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। रात के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ढलती जाए रात।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM कोड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।